0: हर पल जिंदगी का बस दुआ है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो निगम 90.4 एफएम, आवाज तुमचा।
1: नमस्कार, मी आशा वाघमारे बोलत आहे, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 एफएम, आवाज तुमचा।

0: अरे दुश्मन आसू दे गनीम आसू दे कितनी भी हुशियार
1: अरे आसू दे की
0: अरे दुश्मन आसू दे गनीम आसू दे कितनी भी हुशियार
1: अरमान

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

तछम तछम तक तक ना तक था लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तिमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।